गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एबी देनु खै ए ब्रुरु लेट मी जस्ट स्टार्ट बाय सेइंग हैप्पी बर्थडे टू माय सेल्फ एच आउ नियरली फॉरगेट माय गाय गुड लेजी आई डोंट वांट टू से मच बट आई जस्ट वांट टू से थैंक्स गॉड फॉर ब्लेसिंग मी विद अनदर ईयर थैंक यू एबी गुड लेजी ब्रैग देनु खै रियल मोलीबे नॉट बॉय.